मैं मूरख किछ दीजै, परणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै, परणवत नानक सुन।

जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्य हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा,

किचकिचे जे कर सकिए आप ना कीता किछ ना होवै जो हर पावै त्यो रखिए मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नहीं जे किच कर हम सकै।

में दलम्ब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुनवते हर नाम ना बीजेओ, अगे पुखा क्या खाए।

जाने में दलम्ब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुनवते हर नाम ना बीजियो, अगे पुखा क्या खाए।